0: ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा।
1: उस इंतजार से क्या गिला जो तेरे दीदार पे खत्म हो।
0: अभी तो आपको कोई शिकायत नहीं।
1: ये मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे शिकवा करूँ। आप होना चाहते हैं बेवफा, हो जाइए। आपके कदमों पर लाकर रखती है दिलो जान, मेरी मोहब्बत की दुनिया के खुदा हो जाइए।
0: लाइट चली गई, मैं चलता हूँ।
1: नेवर माइंड, आ जाएगी। इन चिरागों के बुझ जाने का गम ना कर, ये आंखें जलेंगी रात भर।
0: क्यों आग के साथ खेलना चाहती हो? जल जाओगी।
1: हम तो एक कतरा है मोम का, हमें खुद में शामिल कर लो, आग बना दो। अपनी सांसों की गर्मी से हमारे जिस्म को भर दो, हमें रूह तक जला दो। इस कदर बरसो आज हम पर, हमारी परसों की प्यास बुझा दो।